तोदे आपे सृष्ट सब पाई जी, तोदे आपे सिरज सब गोई, जान नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होई। आसा महला चौथा।

संबत सत्रह सास भण जय अर्ध सास फोन तीन कह जय भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र बख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवाद 405 चरित्र समापत।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वादा या रा करतन परवार परिया शब्द गावणे।

आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रापाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी।

अहन सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दि नू

तीलता कतेबन कुरान की। पाप पर पक जाते धर्म थक जाते, मरण गर्क जाते सहत बदान की। देवी देव देहोरे संतोख सिंघा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्ति ना होती जो पै करुणा निधान की। निमाणिया दे मन सतगुरु, निताणिया दे तन सतगुरु, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तिना दे मुकद्दस दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, फतेह दे पावन सिमरन दे नाल अपनी ते साडी हाजरी गुरु चरणा विच लवाउंदे होए गज के गजाओ जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, पिछलेरे कुछ दिनों तो चल रही इतिहास की लड़ीवार सांझ जिहड़ी आप नाल पा रहे सां, कुछ विच दिन दिहाड़े आउंदे गए, जिवें बाबे बुढ़ा साहब जी का अंतम दिहाड़ा भाव उन्हां दी बरसी, जिवें धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश। इस करके विचारां उस इतिहास के प्रति करते रहे। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह का ज्योति जोत समाउण का दिहाड़ा है अज्ज, पर मैं जिहड़ी इतिहास की लड़ी आरंभ की उसनू अगेरे तोरन तो पहला इशारा कर देना हाँ कि धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह के तीन पुत्र सन। मैं कल के दीवान विच भी अर्ज की थी, वड्डे सन बाबा पिरथी चंद, उन्हां दा जन्म 1558 का है। उस तो बाद उन्हां दे छोटे भरा महादेव का जन्म होया 1560 के अंदर। धन गुरु अर्जन देव महाराज का आगमन होया 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं। पर जदों गुरु अर्जन देव महाराज छोटे भरा नूं गुरियाई मिली ते वड्डा भरा पिरथी चंद बड़ा कलपिया, उन्होंने अमृतसर ही जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरियाई बख्शी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। वो तो पहला भी विरोध करते सन मेरे पातशाह, ता ही बाणी च लिखिया काहे पूत झगड़त हो संघ बाप, जिन के जने वडीरे तुम हो तिन संग झगड़त पाप। वो तो पहला भी पिता के नाल बहुत सारी तकरारबाजी करता रहा, पर जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरियाई मिली वो बड़ा कलपिया। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह गोइंदवाल की धरती से चले गए। अगले दिन ज्योति जोर समा गए, उन्हें लोगों च प्रचार किया भी गुरियाई काजी मिल गई है, इन्हें तो एक दिन भी नहीं कढ़िया, पिता नूं जहर दे के उन्होंने मार दिता है। यह भी जिहड़ा रौला पृथ्वी चंद ने पाया। पर ध्यान देना गुरु प्यारे साध संगत जी, जदों रसम हुंदी है पगड़ी, एक हुंदी है जिम्मेवारी की पग, वह घर के अंदर वड्डे भरा नूं बन्नी जांदी है जदों पिता अकाल चलाना कर जाए, तो एक सी गुरियाई की पग। बाबा बुढ़ा साहब जी दो पगां लैके गए, पग बाबा श्री चंद्र महाराज ने भी भेजी, पर जदों पृथ्वी चंद नूं वड्डे भरा होण दे नाते दुनियावी पग दित्ती गई, जिहड़ी पग गुरियाई दी धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं बख्शी गई, पृथ्वी चंद उठिया ते उहने उह भी खोह लई। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज किन्ने शांति दे पुंज सन, उन्होंने आख्या कोई गल नहीं वड्डे भराता जी, पगां नाल की है, तुसीं वड्डे भरा लगदे हो, इको मां दे पेटों जाए हां, पगां दोवें तुसीं रख लो। पर बाबा बुढ़ा साहब जी ने धन गुरु अर्जन देव महाराज की निम्रता वेख के तन तन कर उठे। बेनती कर रहा हाँ, अगले दिन ही गुरियाई बख्श के कल दे दिन गुरु अर्जन देव महाराज का गुरता गद्दी दिहाड़ा है। आज दे दिन सतगुरु रामदास महाराज गोइंदवाल की धरती से ज्योति जोत समा गए, उन्हों का गुरियाई काल 6 साल 11 महीने 17 दिन का है। आओ जी मैं इतिहास की लड़ी कहनी थोड़े नाल सांझी कर रहा हाँ, वो तो केवल इशारा है कि अज दिन होण करके, क्योंकि उन्होंने ज्योति जोर समाउण दे उत्ते ज़्यादा लंबा प्रसंग वैसे भी नहीं बन सकता। पर चलो मैं बेनती करा जिहड़ी इतिहास की लड़ी शुरू की उन्होंने मैं आप जी के सामने अगेरे तोरना चाहता हाँ। साहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी नूं छड गए 8 ते 9 पो की दरम्यानी रात 1761 विक्रमी, 8 ते 9 पो की दरम्यानी रात मेरे पातशाह के नाल 3 सिंह निकले, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, वक्खो वक्ख दिशावां च गए, पर तारे की निशानी रखी। अज भी जिहड़े समुद्रां दे अंदर बेड़े चलते ने, अज ते कंपास का युग है, पुरातन समय के अंदर जदों रात नूं सफर करना हुंदा वो तारियां दे हिसाब नाल चढ़दा लैंदा पहाड़ दक्षण वेख के तुरिया जांदा। निशानियां तय कीतियां सन कि गढ़ी च निकल तो बाद
असी माछीवाड़े दे जंगलों वल नूं जावांगे। इसे करके जिहड़े सिख सन जिथे मेरे पातशाह माछीवाड़े दे जंगलों ते जाके डेरा लाया, वारी वारी भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह भी उत्थे पहुँच गए। एक खूह दे उत्ते मेरे पातशाह ने माछीवाड़े तो बाहर बहलोलपुर दे लागे एक बाग दे अंदर, खूह है, जंगल दा इलाका है, उस खूह दी टिंड ला के ते खूह विचों पानी पीता है। इत्थे सद उचारिया गुरु कलगीधर पातशाह ने परमात्मा दी याद विच, मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट खेड़ियां दा रहना। एक कवि लिखदा है, कहिंदा माछीवाड़े दे जंगल विच कंडियां ते टिंड रख सराहणे दिलदार सुत्ता, घर बार आनंदपुर छड आया, करजा कौम दा सिरों उतार सुत्ता, तीन दिन बीते जंग लड़दियां नूं अख लाउणी ना रता नसीब होई, हौली वगनी पुरे दिए तूं पौणे, जाग पवे ना किते सरदार सुत्ता। मेरे पातशाह दे पैरां चों खून निकलिया है, जामा लीरो लीर है, फिर भी अकाल पुरख परमात्मा दी याद में जुड़े हुए, सज्जा हाथ अजे भी तलवार दी मुठ दे अंदर है, उन्होंने अपनी तलवार नूं अपने तो जुदा ना किया। इत्थे जदों तीन सिंह आ मिले, फिर इत्थे गुलाबा मसंद मेरे पातशाह दे कोल आया, उन्होंने अपने घर लै गया। लम्मा इतिहास है, मैं टूक मात्र बेनती करनी है, गुलाबे मसंद दे घरों फिर एक निहाली देई खत्री माता है, उन्हें एक चोला पेट किया, खदर का थान लिया के उन्होंने नीले बस्त्र पहना के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गनी खान नबी खान, एक पासे भाई धर्म सिंह ते मान सिंह, भाई दया सिंह जी मोरां दे खंभां दा चौर कर रहे सन, एक मंजे की पालकी बना के इथों मेरे पातशाह नूं लै तुरे। रस्ते विच थां थां ते पुलिस लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने पता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गड़ी चो निकल गए ने, किसी तरह भी हो सके सरकार उन्होंने गिरफ्तार करना चाहती है। गुरु प्यारी सार संगत राह विच पुलिस पार्टी ने रोकया, कहन लगे ये किन्हां नूं लैके जा रहे हो, कहिंदे साडे उच्च दे पीर ने, क्योंकि बहावलपुर के जिन्ने उच्च दे पीर सन उन्होंने अधिकार सी कि वह पालकी के अंदर बैठ के सफर कर सकते सन। पीर मुहम्मद सरोह वाले काजी पीर मुहम्मद जिहड़े गुरु कलगीधर पातशाह नूं बचपन विच फारसी पढ़ाउंदे रहे, उन्हां नूं पिंडों सद्या गया, ये कौन लोग ने, पर उन्हें आख्या महाराज इत्थे पीरां दे भी पीर ने, उन्हां भी गुरु कलगीधर पातशाह दे श्रद्धालु सन, उन्हां नूं सिजदा कर दिता। इस तों बाद मेरे पातशाह कनेज पहुंचे, इत्थे फतेह लंबड़दार नूं मिले, उन्हें आख्या कोई सेवा, मेरे पातशाह कहिंदे घोड़ी दे दिओ, कहिंदा पातशाह घर नहीं है, पर झूठ बोलदिआं उहदी जबान थथला गई। गुरु महाराज कहन लगे नहीं घर ते नहीं होएगी, कहिंदे सप्प लड़िआ उहदी घोड़ी भी मर गई। इस तों बाद हेरी पहुंचे ने कृपाल दास दे डेरे, कृपाल दास ने पहलां ते आओ भगत कीती पर सरकार दे कोलों डरिया, है ते कृपाल दास ओही जिन्हें भगाणी दे जंग अंदर सलोत्र दे नाल बड़े हयात खां वर्गियां दा सिर फेर दिता। उदों गुरु कलगीधर पातशाह की ताकत वध रही थी, जदों बंदे की ताकत वधदी होवे हर कोई नेड़े आके बहिंदा है, ते जदों ताकत घट रही होवे उदों हर बंदा उस मनुख नालों दूर भजना चाहुंदा है किते मेरे उत्ते कोई आफत ना आ जाए। इस तों अगे मेरे पातशाह चलदे होए लम्मे जटपुरे पहुंचे, इत्थे राय कल्ला चौधरी ये मुसलमान है, ये आके मिलिया, इन्हें बड़े प्यार दे नाल सत्कार किया गुरु महाराज दा, नाले घोड़ा भेट किया, 100 सोने दियां मोहरां भेट कीतियां। कहन लगा पातशाह मेरे गोचरी सेवा, मेरे पातशाह कहिंदे कई दिन हो गए ने चमकौर तो चलिया होया, कई गल्लां कई हवा च उड रही कनसोवां सुनदे आ, छोटे साहिबजादियां नाल की वापरी, अपना कोई भरोसेमंद बंदा भेजो, अपना नूरा माही नौकर राय कल्ले ने भेजिया, सरहंद विच इहदी भैण नूरी व्याही होई है, इन्हें जाके अपनी भैण कोलों सारा हाल पुछया। उन्होंने दस्या जिवें जालमां ने तसीहे दे के साहिबजादियां नूं नीहां चिणिया, फिर उन्होंने होश लिया के किवें ज़िबा कीता, यह सारी दास्तान नूरे माही ने अपनी भैण कोलों सुनी, माता गुजर कौर जी किवें शहीद हो गए, ये सारा कोई सुन के ते मेरे पातशाह नूं उत्थे आके दस्या लम्मे जटपुरे राय कल्ले दे कोल। जदों दस रहे सन सारे सिंघां दे अखां चों नीर वह रहा सी, मेरे पातशाह दे चेहरे दा जलाल उसे तरह एक तीर दी नोक नाल काई दा बूटा पुट रहे सन। जदों पूरी गाथा मुकम्मल होई ते काई दा बूटा भी पुटिया गया, ते राय कल्ले ने आख्या पातशाह ये की, मेरे पातशाह कहिंदे जुल्म राज दीआं नीहां हुण पुटियां जा चुकियां,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਖਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਖਤਮਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸੂ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੰਗਿਆਰ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਜੂ ਬਚ ਤੱਕ ਉਸਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਂ ਦਸ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਮ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਅਤੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਵੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਕੀਜੈ ਜਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮ ਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਰਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁਬਾ ਫਿਰ ਖੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਲਾ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਓ ਤੱਕੋ, ਮਾਝਾ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ, ਬੀਏ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

श्री गौर तह बैठायो, रहस कियो सुर देव, तोहे जस जय जय जम पहे, असुर गए ते भाग, पाप तिन भीतर कम पहे, काटे सो पाप तिन नर होके,

जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसाम नूर अर सौ पुरसा सकी डे सचे पाथ का मन जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात साहो सिर सांद साहो जैस

फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने बेअंत बेअंत कृपा की है जीवां दे कल्याण दे वास्ते अमृत वेले तो निरंकारी दर्शन दीदार सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। तुर की बाणी नित नेम कीर्तन कथा दे रूप दे विच बख्शिश की है। हुण संगत जी सुख आसन सेवा होवेगी। वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चाओ की चाओ गर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तो मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभ अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाव ना लगाई पार ब्रह्म शरणाई चाओ गर्द हमारे राम कर सुख लगे न भाई सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई राम नाम औखद दियाए काले वलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सा ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पही प्रभ पहे सहाय सलोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अनाहावना तोना छुटे निकट न जाइयो दूसलोक महला पंजवा मन में चितव चितवनी उदम करो ठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर नानक नीत सोहेला रा गौड़ी दी की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता किया करते का होय बिचारो तित कर गाव सोहेला सिवरिहु सृजनहारो तुम गाव मेरे निर्भाव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहा नित नित जीअड़े संभालिया न देखेगा देवन हार तेरे दान कीमत न पावे तिस दाते कवण समार संबत साह लिखिया मिलकर पाव तेल देहो सजन सीसड़िया जो हो वै साव स्यो मेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवान राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर को वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विसोए चस्या घड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ सूरज को रोता नेक नान करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल राव चांद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पावन चावरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होय पावखण न तेरी आरती अनहता सब दवा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तुह को सहस मूर्त नानक तोई सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सामै जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो अन दिन मोह आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले मंडल मंडा हे कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे कडन डाउत पुन वड्डा हे रहा साकत हरा साध न जानिया तन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पाव खंडा है अबनासी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्राव तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम धार टेक हर नाम में ही सुख मंडा है हरा गौड़ी पूर भी महला चौ पंज

कर इकट्ठे एक रतीले भाए। ऐ बंदे मता किधरे भुले खिच तो पै। लखा मन लकड़ियां एक चिंगारी नाल भस्म हो जांदियां ने। रंजक मात्र नाम दा जा सुरत शब्द की कागरता नाल कीता होया जा लखा जिंदगियां दे पाप धो देंदा है। अनंत जन्मा दे पाप साड़ के राख कर देंदा है, स्वा कर देंदा है। ये नाम दी बरकत है, ये नाम दी महिमा है, ये नाम दी ताकत है। तो भगत सदना जी महाराज कहंदे ने आप पुराणक प्रसंग सामने रखदे ने। निरप कन्या के कारने एक भया भेखदारी कामारथी स्वारथी वाकी पैज सवारी। विष्णु जैसे कपड़े पहन के विष्णु दा ही रूप धारण करके एक विकारी एक कामारथी विष्णु दा रूप धारण करके एक राज कन्या नु ठगन लग गए। और रोज उस कन्या नु प्रभावित करता है। एक दिन गीत गा रहे सी प्रभु दे जुड़ गया, जुड़दिया ही पखंड खत्म हो गया, जुड़दिया ही भेख उतर गया, जुड़दिया ही ख्याल आया जे मैं बारहों विष्णु बनिया ते हुण मैनू अंदरों बनना चाहिए। जमीर दी आवाज आई विष्णु दा तैं रूप बनाया विष्णु दा तेरे कोल मन नहीं है। देवते दी तू काया बना ली पर देवते वाली तेरे कोल जमीर नहीं है। ऐसा आत्मा ने झंझोड़िया ऐसा प्रभु दा गीत गाया कि वाह कई ओ विष्णु वर्गा हो गया। विष्णु जैसा पावन विष्णु जैसा पवित्र। तो भगत सदना जी कहंदे ने कामारथी स्वार्थी उते कामना नाल भरिया होया सी, उते स्वार्थ नाल भरिया होया सी, उते दुनियावी पदार्थां विच लिबड़िया होया सी। ते इस सब कुछ नूं सामने रख के उन्हें बंदगी कीती, उन्हें नाम जपिया ते हे प्रभु तू उन्हों भी रस दे दिता, तू उन्हों भी सुकून दे दिता, तू उन्हों भी चैन दे दिता। निरप कन्या के कारण एक भया भेखदारी कामारथी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। तो गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम पुग ग्रासे। अगां चल के भगत सदना जी कहने ने एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे। प्यासा एक बूंद लई तड़पदा फिरे, एक बूंद दी मंग करे भी किसे तरीके नाल एक बूंद पानी मैनू किधरों मिले। और हकीकत है कि पानी दी कदर प्यासे नू है, भोजन दी कदर भुखे नू है, कपड़े दी कदर नंगे नू है, औलाद दी कदर बे औलादे नू है, ते इंज कह लिए परमात्मा दी कदर भगत नू है। जिदे अंदर भक्ति भावना पैदा हो गई है। एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे। एक बूंद दी खातर प्यासा चारों पासे तड़पे ते दुख प्राप्त करे। हर पासे दुखी होवे प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे। तड़प तड़प के उसने प्राण दे दिते ने ते हुण सागर उसनों मिले, हुण दरियावां दे दरिया पानी दे उसनों मिलन केड़े कम दे। दरअसल सदना जी ये कह दें कि मौके उते जो कर्म कम सरिया ने बेमौके कम दा की मतलब। प्यासा तड़प के मर गया ते हुण पानी मिले है किड़े कम दा। आम धार्मिक दुनिया विच कहा जांदा है कि परमात्मा दे घर देर है अंधेर नहीं, पर मैं अपने ढंग नाल सोचया नहीं देर ही अंधेर है। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर है, अगर देर हो गई तो निराशा पैदा हो जाती है, अगर देर हो गई तो विश्वास उठ जाता है। मैं ऐसा समझदा परमात्मा दे घर देर भी नहीं। जैसे अग विच हाथ पाइए उसे वक्त हाथ सड़दा है, जैसे फुल्लां कोल बैठिए उसे वक्त महक मिलती है, जैसे बर्फानी पहाड़ हिमालिया दे कोल बैठिए उसे वक्त ही जो है ठंड मिलती है। इसे तरीके नाल शुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है, अशुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है। शुभ कर्म मनुख नु खेड़ा देंदा है, सुकून देंदा है, शांति।

भगत रविदास जी महाराज उस दौर विच बनारस विच पैदा होए ने, जद के भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया होया सी। हर पासे भगती लहर, हर पासे भगत भावना विच डुबे हुए महापुरुष साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक है, वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर युग विच हर समय विच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने, लेकिन भारत दा मध्य काल भगती काल मनिया गया, जिस देच चौ दिशा देच भगत ही भगत पैदा होए। उसी भगती काल देच सूफी फकीरा ने भी अपने अमर संगीत दे रहे इस देश नू अध्यात्मिक तौर पे सरसब्ज कीता और मानसिक तौर पे उच्चा कीता, जीवन दी जाच दसी। रविदास जी महाराज उन्हां ही सिरमौर भगतां विचों एक महान भगत ने, पेशे दे चमार पर चमड़े तो उच्चे जीण वाले, पेशे तो मोची चमड़े दा कम करन वाले, पर शरीर दे चमड़े तो उच्चे होके उन्होंने सारी जिंदगी बतीत की। शरीर दे तल दे उते जो जी रहा है, चमड़ी दे तल दे उते जो जी रहा है, इंद्रियां दे तल दे उते जो जी रहा है, वास्तविक चमार ते ओही है, क्योंकि वो वेखदा है चमड़े नू, चमड़े नू ही सवारना जिंदगी दा मनोरथ है, चमड़े खलड़ी दा ही रस मारना जीवन दा लक्ष्य है। ऐसे पुरुषा नू चमार आख्या जा सकदा है। चमड़े दा कम करदिया होया सुरत चमड़े तो उच्ची रखनी, ए कोई भगत रविदास जी महाराज तो सिखे। उन्हां दा काल ऐसा सी कि चारों पासे रविदास ने अपनी भक्ति संगीत नाल प्रभावित कीता। हैरानगी दी गल है कि अनपढ़ जद विद्यक मंदरां दे दरवाजे भी आप लई बंद ने, धार्मिक मंदरां दे द्वार ते बंद ही सन, लेकिन ऐसी अगम्मी विद्या आप दे अंदरों फुटी, ऐसा अगम्मी संगीत आप दी चेतना दे चों प्रफुल्लत होया। दरअसल ये हकीकत है कि परमात्मा जद भी किसे दे अंदरों प्रगट होंदा है, बसो गीत राही संगीत राही। संगीत और गीत परमात्मा दे बहुत निकट है, बहुत निकट है। संगीत एक कला है, गीत एक कला है, ते परमात्मा स्वयं भी एक कलाकार है, ऐसा महान कलाकार कि उसकी कला चारों पासे सानू देखण नू मिलदी है। एक निक्का जिहा बीज धरती विच बो के जदों अंकुरित होंदा है, कोमल रूप उसका धरती तो बाहर निकलता है, सहजे सहजे विकसित होंदा है, शाखां पत्ते फिर उस दे चों जद फुल खिड़दे ने फल लगदे ने, एक ऐसी महान कला है कि उस अदुत्ती कलाकार नू दाद दित्ते बिना रह नहीं सकदा मनुख अध्यात्म वासी। उसकी कला चारों पासे फैली हुई है, सागर दे चों भाप उठती है, उमड़ उमड़ के वो चारों पासे बरसती है, एक महान कला है। पहाड़ां दे चों झरनियां दी रफ्तार और ए गुंजार, चारों पासे दाए वातावरण दरअसल उस महान कलाकार दी कला दी ही प्रदर्शनी है। कदी कदी संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और लेखक लोग अपनी कला दी खास रूप विच प्रदर्शनी कराया करदे ने, पर उस महान कलाकार दी प्रदर्शनी कला दी हर वक्त हो रही है, हर थां ते हो रही है, जिस पासे भी निगाह मारीए कला ही कला है, चाहे आसमान ते झात मारीए, चाहे सागर ते निगाह मारीए, चाहे पहाड़ां दीआं चोटियां नूं वेखीए, ते चाहे धरती ते निगाह मारीए, चाहे पशुआं नूं वेखीए, पक्षियां नूं वेखीए, बनस्पति नूं वेखीए, हर थां ते उसकी कला उजागर हो रही है, प्रगट हो रही है, और वो ऐसा कलाकार है

0: हर कला विच ओ निपुण है, जिसनों गुरबाणी कहती है तू सर्व कला का ज्ञाता, तू हर तरह के कला का ज्ञानी है। तो प्रभु जद भी किसी के अंदर प्रगट होता है कला दे राही होता है। भगत रविदास जो पेशे दे चों चमार ने, जुतियां गंढना, नवियां जुतियां बनाना, चमड़े नू रंगना और मोए हुए ढोरां दी खल लाने, इते आपदा धंधा है। पर बैठिया बैठिया जद भी आप दे अंदरों प्रभु प्रगट होता है, गीत दे राही संगीत दे राही रविदास ने अनेकां रागां विच शब्द अपना मधुर कलाम उच्चारण कीता है और सुना सुना के तपदे हिरदे शांत कीते। आप दे उत्ते एक प्रश्न होया, जद आप भारत दी यात्रा ते सन, कहां के बासी, कित्थों दे वासी हो, कित्थों दे रहन वाले हो। रविदास का यह जवाब बड़ा आलमाना है, फिलसफाना है। इनू वेख के अंदाजा लाना पैंदा है, नहीं ये ते रब ही बोल रहे है, अंदरों परमात्मा बोल रहे है, एक चमार दे बोल नहीं हो सकते। हकीकत है कि बहुत वड्डी सच्चाई है कि प्रभु इस महान फिलसफे दे राही गीत दे राही संगीत दे राही रविदास दे अंदरों प्रगट होया है। ये ठीक है कि आप जुतियां गंढ रहे ने, पर नहीं, अगले दा दिल दिमाग भी मधुर अमर संगीत ते गीत दे राही रब नाल गंढ देंदे ने। इस वास्ते कहना पएगा कि तमाम भगतां दा धंधा भी धर्म है। अज हर चौक विच मोची बैठे ते मिलणगे, पर रविदास जैसा चमार खोजना बहुत कठिन है। हर शहर विच ग्वाले और जुलाहे, मामार, कुमार, नाई, तोबी, कसाई, छींबे बैठे ने, पर नामदेव जैसा छींबा लभना बहुत औखी गल है। जो सिर्फ अगलियां दे कपड़े ही नहीं रंगदा, दिल दिमाग नू भी रब्बी रंगण चाड़ देंदा है। सिर्फ कपड़े ही नहीं कबीर बुणदा, ताना पेटा ही इक नहीं करदा, ओ जीव ते आत्मा नू भी इक करण दा उपदेश ते संदेश देंदा रहिंदा है। इन्हां भगतां दे दरअसल धंधे भी धर्म ने। इन्हां दी कृत दे चों भी कीर्ति दी खुशबू आ रही है, जदके आम बंदियां दा धर्म भी खिमा करनी अंदर धंधे दी बदबू रखता है, दुर्गंध रखता है। तो भगत रविदास दे अंदरों प्रभु प्रगट होया है फिलसफे दे राही गीत दे राही संगीत दे राही। जद आप ते प्रश्न होया कित्थों दे वासी हो, तां आप कहिंदे ने बेगमपुरा शहर को नाम, मेरे शहर दा नाम है बेगमपुरा, मैं उत्थों दा वासी हां। बेगमपुरा ये कित्थे है, नक्शे च देखांगे ते किधरे नहीं मिलेगा। किसे मुलुक दे एक कस्बे शहर दा नाम नहीं है, प्रांत दा नाम नहीं है। धरती दे उत्ते जिथे भी चले जाइए गम मौजूद है, दुख मौजूद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिड़ा गमगीन ना होवे, ऐसा कोई परिवार नहीं जिथे दुख ना होवे, ऐसा कोई कस्बा ते शहर नहीं जिथे विपतावां ते कलेश ना होवे। कोई ऐसा धरती ते मुलक नहीं है जिथे गम ना होवे। पर रविदास कहिंदे ने मैं ते उत्थों दा वासी जिथे गम है ही नहीं। बेगम पुरा शहर को नाव, दुख अंदो नाही तै ठाव। जिस नगरी दा मैं वासी हां उत्थे दुख है ही नहीं, उत्थे पीड़ा है ही नहीं, उत्थे कलेश है ही नहीं। हुण रविदास दे दसे हुए इस बेगमपुरे नू लभीए, जमीन दे जिथे गम नहीं दुख नहीं, तो धरती देते ते ऐसा लभना बहुत औखा है, जबकि हर बंदा ਗਮ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੀੜਾ ਤੇ ਆਹ ਹੌਕਿਆਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਬਾਬੇ ਸੀਖ ਹੈ ਹਮ ਕਰਵਟੇ, ਹਰ ਸੂ ਬਦਲਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ, ਤੋ ਵੋ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲਤੇ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਚ, ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜ਼ਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੌਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੱਸ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਰੋ ਰਹੇਗਾ, ਸਕੂਨੇ ਕਲਬ ਸੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨੇ ਕਲਬ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਤੋ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖਿਰਾਜ ਟੈਕਸ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਖਿਰਾਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਪਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਧੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਰਾਮ ਵਧੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਵਧੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵੱਧੇਗਾ, ਖਰਾਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਜੋ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਖਰੀਦਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਇਆ, ਸ਼ੀਲ, ਸੰਜਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਐਸਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵੈਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, कि राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल। ईजड़ा पदार्थ ईजड़ा माल तू प्राप्त कीता है, ऐ कबीर इस पदार्थ दी गठड़ी किधरे खोली ना, इस माल असबाब दी कठड़ी किधरे खोली ना। क्यों कि ऐसा बैरूनी दुनिया विच कोई बाजार ही नहीं है। राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पार खो, नहीं गाहक नहीं मोल। कोई पटन नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिथे बैठ के इस पदार्थ नु वेचया जा सके। भगत कबीर कहंदे ने जे मबादा इस अमर पदार्थ नु, इस दैवी गुणा दी गठड़ी नु मैं दुनिया दे बाजार विच खोल भी लवां, जैसे कोई हीरियां नु वेचे उत्थे जिहड़ा कोलियां दा बाजार होवे, कोई सोना वेचण उत्थे चला जाए जिस बाजार विच लोहा बिकदा, कोई हीरे लाल पन्ने जवाहरात उस थां ते वेचण चला जाए जिथे इट्टां बिकदियां ने लकड़ां बिकदियां ने। ये गल सुभाए मानते नहीं, लेकिन कबीर कहंदे मैनू ऐसा मजबूरन ये हीरियां दी पंड उत्थे खोलनी पई है जो बाजार ही कोलियां दा है, जो बाजार ही पत्थरां दा है, जो बाजार ही लोहे दा है। मजबूरी है कि जिहड़े हीरे मेरे कोल ने इन्हां दा कोई बाजार ही नहीं है। दरअसल दुनिया दे किसे बाजार विच भी चले जाइए, सबर कित्थों मंगीए, संतोख कित्थों मंगीए, केड़ी दुकान तो मंगीए, सील संजम दया किस दुकान तो मंगीए। ये दैवी गुणा दी दौलत इस दे कोई बाजार नहीं है। नहीं पठन नहीं पार को। आम बाजार विच भगत कबीर कहंदे जे मैं बैठ भी जावां तो वाकई ये रब दियां महान गल्लां आम बाजार विच ही कहनियां पैंदियां, आम दुनियादारां दे सामने ही रखनियां पैंदियां ने, जिथे वाकई ऐसा देखण दे चाया है कोई पारखू ही नहीं आउंदा। क्योंकि कोलियां दी मंडी विच ते कोलियां दे पारखू आणगे, पत्थरां दी मार्केट विच पत्थरां दे जानकार आणगे, लक्कड़ मंडी विच लकड़ां दे खरीदार आउणगे ते लकड़ां दे पारखू आणगे ते किहड़ी लकड़ है चंगी है माड़ी है इमारती है जलाऊ है। लकड़ां दे ही खरीदार आउणगे लकड़ मंडी विच ते लोहा मंडी विच लोहे दे ही खरीदार आउणगे। भगत कबीर कहंदे ने इन्हां मंडियां च मैं बैठ गया हीरियां दा व्यापार करन लई, हीरियां दी पंड खोल के मैं उत्थे बैठ गया। अक्सर भगत लोगां ने प्रभु दे गीत उन्हां लोगां नूं सुनाए ने जो प्रभु दे गीत ना सुनना चाहते सन ते ना ही उन्हां दी सूझ ते समझ सी। यही कारण है कि भगत जो कहंदे रहे संसार दा उन्हां बोलां नाल तालमेल नहीं बैठता रहा, संसार विरोधता करता रहा। तो भगत जी कहंदे ने कोई पारखू ही नहीं है, मैं बैठा लोकी कोले खरीदते पे ने, इट्टां खरीदते पे ने, पत्थर खरीद रहे ने, लोहा खरीद रहे ने, लकड़ा खरीद रहे ने, ते मैं पोटली खोल के बैठा मेरी तरफ कोई आउंदा ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं, कोई पारखो नहीं। नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक, फिर कोई खरीदार ही नहीं गाहक ही नहीं है। जो चीज मेरे कोल है इसका कोई खरीदार ही नहीं है। देखण दे चाया है एक राजनीतिक दे पिछे जितनी भीड़ चल पैंदी है, एक धनवान दे आले जितनी दुनिया मंडलाउंदी है, अध्यात्म दर्शी दी जीवदियां जी करीबन करीबन संसार ने विरोधता ही कीती है, उहदे बोलां नाल उहदी जिंदगी नाल जगत सहमत नहीं होया। तो श्री कबीर कहिंदे ने कोई ग्राहक ही नहीं है। ते जे मबा दा इस बहुती भीड़ दे जो कोलियां दे ग्राहक ने लोहे दे ग्राहक ने किधरे एक कद इस हीरे दा ग्राहक आ भी जाए, पारखू आ भी जाए, ता नहीं मोल ओ मुल देन नू तैयार नहीं, ओ मुल नहीं उतारदा। समझते है ए हीरा है, परखते है उसनू, और ओ खरीदार भी है, लेकिन मुल नहीं देना चाहता। इत्थे सवाल पैदा होता है, मुल की है। कंचन स्यों पाये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन ही उसका मुल है। अपना मन भेंट करिए ते राम नाम दा हीरा प्राप्त करिए, पर ए मुल देन नू कोई तैयार ही नहीं। इस वास्ते खरीदार होंदे आया भी, पारखू होंदे आया भी, सूझ समझ रखदे आया भी, कई मनुख इस महान हीरियां तो वांझे रह जांदे ने, क्योंकि मुल नहीं उतारदे। मुल जो है नहीं देना चाहते। तो आम इना ब्रह्म ज्ञानियां नू, भगत लोगां नू ये अपने बोल ऐन संसारी मनुखां दे सामने रखने पए। श्री रविदास जी महाराज कहिंदे, ना तशवीश खिराज ना माल। माल मेरा वद्दा जा रहा है, धन पदार्थ मेरा वद्दा जा रहा है, पर इससे मैनू कोई खराज नहीं देना पैंदा, इससे मैनू कोई टैक्स नहीं देना पैंदा। खौफ ना खता ना तरस जवाल। फिर जिस शहर विच मैं रहना, उत्थे किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं, डर नहीं। अज ते असी देख रहे हैं कि जंगलां दे च खौफ खत्म होंदा जा रहा है, शहरां दे च खौफ वद्दा जा रहा है। जंगलां दे च जंगली जानवर घटदे जा रहे हैं, शहरां दे च जंगली जानवर वद्दे जा रहे हैं। चार पैरां वाले चौपाए जानवर जंगलां दे च घटदे जा रहे हैं, दो पैरां वाले जानवर वद्दे जा रहे हैं। ते अजोके युग दे च चार पैरां वाले जानवरां दा इतना खतरा नहीं रहा, दो पैरां वाले जानवर दा खतरा वध गया। प्राचीन समय दे चौपायां दा खतरा सी, और उना तो बचाव दे ही सारे उपराले करने पैंदे सन, साधन जुटाने पैंदे सन, सारी सारी रात अग बाल के रखनी पैंदी सी, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता हमला आवर ना हो जाए, या फिर सप्पां तो बचण दे उपराले करने पैंदे सन, हाथियां तो बचण दे उपराले करने पैंदे सन। अज ते सारे उपराले वसीले ने इस दो पैरां वाले जानवर तो किस ढंग नाल अपने आप नू बचाईए ते अपने आप नू सुरक्षित करिए। श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, जिस शहर दा मैं वासी, उस शहर विच खौफ नहीं है, डर नहीं है, ना कोई डरांदा है, ना कोई डरदा है। दरअसल यही ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करदे ने, भय काहू को देत नैं, नैं भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। डराना दुष्टपना है, डरना कायरता है, बुजदिली है। बुजदिल भी परमात्मा तो दूर है, पर जालम भी परमात्मा तो दूर है। बहुत वड्डा भयानक मानसिक रोग है डरना ते डराना। इस तो भगत उच्चा जीवदा है। तो भगत रविदास जी महाराज कहिंदे ने, जिस शहर दा मैं वासी, उत्थे खौफ नहीं है, खता उत्थे धोखे भी नहीं है, उत्थे छल नहीं है, उत्थे कपट नहीं है। जिस दुनिया दा मैं वासी हां, जिस शहर दा मैं वासी हां, उत्थे धोखा नहीं है। धोखा देना, धोखा खाना, इना दोहां तो उच्ची जिंदगी है, इना दोहां तो उच्चा जीवन है। ते जवाल कहिंदे ने, धेंदी कला नूं, पस्ती नूं। उन ते आलमा दा कहना है, हर कमाले रा जवाल। कोई ऐसा कमाल नहीं जो जवाल दी तरफ नहीं जांदा, कोई ऐसा चढ़ना नहीं जो टहिंदी कला दी नहीं तरफ नहीं जांदा। ऊचंग तनी चंग नाना सुम ऊचंग। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा कहना, ऊंचा चढ़े सो जाए भयाला, जो ऊपर जा रहा है आखिर थल्ले आएगा, जो ऊंचा उठ रहा है आखिर थल्ले आएगा। बच्चा वध रहा है, वध रहा है, ताकत वध रही है, सुंदरता वध रही है, शक्ति वध रही है, आज बुढ़ा हो गया, उन घटना घटना घट जाएगा, उन ढेंदी कर, उन जवाल शरीर जवाल दी तरफ जाते ने, पहाड़ जवाल दी तरफ जाते ने, सूरज चंद तारे जवाल दी तरफ जाते ने। स्वयं गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगनं घटंत गिरतर्स खंडन घटंत ललना भ्रात मोहितं। आखिर स्त्री दा मोह, भरावां दा मोह भी एक शिखर ते पहुंच के घटना शुरू हो जाता है, पुत्रां दा मोह भी एक शिखर ते पहुंच के घटना शुरू हो जाता है। इस तरीके नाल सूरज भी घटदा है, चंद्रमा भी घटदा है, पहाड़ भी घटदे ने, जमीन भी घटदे ने, ते जो घटदा है आखिर मिटदा है, जो वधदा है वो घटदा है, जो घटदा है वो मिटदा है। ये नियम सब ते लागू है, एक ते नहीं लागू, वो परमात्मा या जो परमात्मा नाल जुड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है, ईश्वर देच अकाल पुरख देच ना घटना है ना वधना है, बाकी हर चीज वाधे दी तरफ जांदी है, ते वाधे तो बाद फिर घाटे दी तरफ जांदी है, ते घाटे तो बाद फिर मिट जांदी है। वधना घटना मिटना ये नियम हर एक ते लागू है, हर वस्तु ते, हर जीव ते, हर आकार ते। पर श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, जिस शहर का मैं वासी हाँ उत्थे जवाल है ही नहीं, उत्थे घटना है ही नहीं, ते जद घटना ही नहीं तो फिर मिटना भी नहीं है। अमिट दुनिया की प्राप्ति हो जाती है, अमिट संसार, अमिट आनंद, अमिट सुख, जो नेस तो नाबूद हो ही नहीं सकता। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, हुआ खैर सदा मेरे भाई। उस शहर देच सदीवी खैर बने हुए हैं, सदा ही खैर, सदा ही चढ़ दिया कला, कदी माड़ी खबर नहीं आवड़ी। जमीन देते कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे रोज कोई ना कोई माड़ी खबर ना आवे, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जिथे माड़ियां खबरां अखबारां विच पढ़न मिल जो है ना मिलन। पर श्री रविदास जी महाराज कहते, जिस शहर का मैं वासी हाँ उत्थे सदीवी खैर है, कदी कोई माड़ी खबर उस शहर की है ही नहीं। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, उवा खैर सदा मेरे भाई। हे मेरे प्रा उत्थे सदीवी खैर, उत्थे सदीवी आनंद है। मैं उस शहर का वासी, मैं उस नगरी का वासी, और उस नगरी दे वासी ही सारे लोग तुसी बनो। हकीकत है बैरूनी दुनिया विच जिस मुल्क दे सुख ज्यादा होवे, वो मुल्क बाकी लोगों लई अपने मुल्क दे दरवाजे बंद कर देंदे ने, दुखी लई, कमजोर लई, गरीबां लई अपने मुल्क दे द्वार बंद कर देंदे ने। ऐसा असी धरती ते देखते हैं। एक प्रांत विच बहुत कुछ होवे ते बहुत कुछ प्राकृतिक संपदा होवे, वो प्रांत भी दूसरे प्रांत लई द्वार बंद करदा है। एक व्यक्ति कोल बहुत कुछ हो जाए तो बहुत कुछ दे होंदे आए वो दूसरे व्यक्तियों लई दरवाजे बंद कर देंदा है। पर रविदास कहते, जिस शहर का मैं वासी हाँ बेगमपुरे का, इस शहर के बूहे हर एक लिए खुले ने, कोई भी आवे इस बेगमपुरे दे च वसे ते आनंद लवे, सुख चैन लवे। मैं सब नू आवाज मार रहा, सब नू ढडोरा पिट के बुला रहा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नूं समझना है, हस्ती नूं समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना

0: KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया है। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया है, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

ना हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान बलेंगे। श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अभिचार हिसार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गढ़ाण के तोड़न हार सुबातन ही चाक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिरनायक जाच कनेक सब एक दिवैया। दानव देव निंदन साचर भूत भविख पुहान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैर तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जाग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र आदप जाऊन त्रिलोक राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म

चारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किले विह कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरा हो जिनका मोह टुटा तनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है।

पछोताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण है। आख है ता वेखा है सब तू है जिन जग तो पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद उपायक वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनों आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बेखम मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। कन्या हो तिखी वाल हो निक्की एत मार्ग जाना, गुर प्रसाद जिन आप तजिया हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए हो ते वचल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हो ते वह चल हो जना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा ते आवे हे, जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वार है सुख पावे हे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै ते वह चलावे हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन न वसिया जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गली किनै ना पाया। कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित सिओ पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै बिन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहसा जीव मलीन है कित संयम धोता जाए, मन धोवा हो शब्द लग हो हर सो रह हो चित लाए। कह नान गुर प्रसादी सज उपजै एह सहसा एव जाए। जी यह मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जी यह ता मैले, तिनी जन्म जूवै हारिया। एह तसना वड्डा रोग लगा मरण मनहु विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुनेह नाही फरह ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे, तिनी जन्म जूवै हारिया। जी अहो निर्मल बाहर अहो निर्मल, बाहर अहता निर्मल जी अहो निर्मल, सतगुर ते करणी कमाणी। कूड़ की सोए पहुँचा नाही मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै तां सनमुख सिख कोई जी है गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परणै गुर बिन अवर न जाणै कोए। कह नानक सुनहु संत हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर।

या अहनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जा होवै सिफत खसामंदी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: चिट्टे छोले जो कैनेडा विच ही उगाए गए हैं, लवो 2.99 दा पैक, बिना बीज वाला हदवाना 58 सेंट्स नू पाउंड, 4 पाउंड धोती हुई उर्द अते मूंग दाल लवो 4

एक बच्चा रहस्य देश जीवंदा है, एक कवि रहस्य देश जीवंदा है, एक संत रहस्य देश जीवंदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग का बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहता मैं सब कुछ जानता चाहे कुछ भी नहीं जानता, मैं तो सब कुछ वेख लिया, मैं तो सारा सुन लिया, मैं उसे पूर्ण तौर पर सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होती, रहस्य नहीं पैदा होता, विस्माद नहीं पैदा होता। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया, विस्माद नु खत्म जरूर किया। मनुख की दुनिया में जो एक विस्माद सी रहस्य सी वो खत्म हो गई, वो अज देखने नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ये विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नूं ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नूं भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवंदे ने, संत विस्माद विच जीवंदे ने। भगत जयदेव जी महाराज कहंदे ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है, परकृत परम वो प्रकृति तो परे। कहंदे ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते देच एक गंदगी दा ढेर है, सवेर दा वक्त है, सूरज दियां किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदिया नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां देश तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने ने परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करन दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां, हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जाती है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है परमात्मा दा नाम है उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगां चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि न दानोद जस सिमरण न जन्म जराद मरण भयं, नहीं आउंदा जिहदे सिमरण करन दे नाल जन्म दा दुख मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकती। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्च

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां, मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवा, जे मुंह पिरी मिलन, जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना ता चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उहनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने यह पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ये नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लतां नूं अपने जिस्म नूं कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी
सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी का सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी का ने ता अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, निहो कवल जल जानी है खिड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओ खिच पानी विचों उन्हूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उन्हूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ असमान दे उते ओ धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकारन लग पिया है। ओहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमक दे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरण तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले,
ਨਿਉਂ ਕਵਲ ਜਨ ਜਾਣੀਆਂ ਖਿੜ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਾਬੀਏ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰ ਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਕਿ ਮਰੀਦ ਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਰਹਾਓ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਸੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਰੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਖਾਏ ਵੀ ਪੀਏ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਬਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

सब कुछ चलाए मान है, जो चल रहे होवे ते चलाए मान होवे उसे नु कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है, पकड़न दी कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नु पकड़न दी कोशिश करिए गया, रात नु पकड़न दी कोशिश करिए गई। इस तरह जवानी नु पकड़न दी कोशिश करिए हथों निकल जाएगा, जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों दी पकड़ दे ना आवे, जैसे पवन नु पकड़न दी कोशिश करिए ते हथां दे बंद करिए, मुट्ठी दे बंद कर दे हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे ना आवे, चलाए मान है, उसनु चंचल आख्या है, उनु कूड़ आख्या है। पर जीवन दा लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन दी प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस ए कूड़ चाहिदा है, यही संसार चाहिदा है। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज से फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा परबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरवाणी कहती है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लेके खुशी मिलती होवे, बस उसे नु आखिया गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दित्ते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जानोगे मनमुख है, जिसकी सारी खुशी लैण दे खड़ी है। जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधरों लेना पै जाए और मिले खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लेना खुशी है, देना दुख है, ये लोभी दे लक्षण है। हथों देके भला मनाए, देके खुशी आती है, देके प्रसन्नता आती है। और जिसनों दिता जाता है उसका भला भी मंगता है, ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देन दे चाहे, पर जे लैन दे चाहे तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होवे। तृष्णालु का लक्ष्य कूड़ होता है, माया होती है, संसार होता है, पदार्थ होते हैं। और महाराज कहते हैं मनुखी दुनिया ते जात मार के देखिए, नानक कूड़ रहा भरपूर। कूड़ ते व्यापक है और बड़े व्यापक पद्धर ते चल रहे हैं। इतने कि कोई किधरे सच बोल देवे ते हूं झूठ समझिया जाता है, पर झूठ बोले ते सच समझिया जाता है, क्योंकि व्यापक ओही है। हजारा पागलां दे इकट्ठ विच किधरे कोई इकद सियाणा आ जाए तो हजारा पागलां दी दृष्टि दे ओ सियाणा पागल है, या उसनु पागल कर देंगे। जैसे ये अनुभव है भीड़ जिस पासे चल रही होवे कल्ले नो उसे पासे चलना पैंदा है, या फिर पूरा संघर्ष करे। देखण दे चाहे भगत ते अवतारां दी जिंदगी बड़ी संघर्ष दे चलंगी, क्योंकि जिस पासे भीड़ सी अवतार उस पासे चलन नु राजी ना होए। और अवतार दा मतलब सी भीड़ दा रुख मोड़िए, रुख दे मुड़दे ही लक्ष्य बदल जांदा है। और भीड़ आखिर संघर्ष ते उतारू होवे

0: तो अवतारा नु सोली ते चढ़ना पैंदा है, अवतारा नु कत्ती तवी ते बैठना पैंदा है, अवतारा नु पिंजरिया विच कैद होना पैंदा है। हैरानगी है कि जगत दे जितने चोटी दे सतवादी ने उन्हां नाल संसार ने बड़ा अन्याय किया, संसार ने बड़ी बेइंसाफी की थी। वास्तविक पागलों की भीड़ विच जो जितना सियाणा होवेगा उतना ही पागल कहलाएगा। दूर क्यों जाओ, इस भीड़ ने कह दिता सी गुरु नानक नूं, सतगुर आप कहिंदे ने, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। ये विचारा नानक भूतना हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। भीड़ ने ते गुरु नानक जैसी अजीम शक्ति नो, महान आलम नो, छोटी दे दार्शनिक फिलोसफर नो, रब्बी चिंतक नो, प्रभु दी मूर्ति नो भूतना कह दिता। हैरानगी है जो सारिया दे भूत ने उतारण आया है, जगत उसनु भूतना कहिंदा है। जो हर एक दी जिंदगी नु ताल देण लई आया है, जगत उसनु बेताला कहिंदा है। ऐसा क्यों? भीड़ तृष्णालुआं दी है, भीड़ मायाधारियां दी है। ते मायाधारी किसनु कहोगे? जिस दी जीवन दा लक्ष्य संसार है, पदार्थ है, जी रहे है पदार्थां दी खातर, जी रहे है संसार दी खातर। तो संसार वड्डा हो गया, पदार्थ वड्डे हो गए, धन ही महान हो गया, कि जीवन से कुछ भी नहीं है। जीवन उस दिन महान बनता है जब लक्ष्य इस जीवन तो उच्चा होवे, तो वो परम जीवन ही हो सकता है। ते परम जीवन परमात्मा ही है। जिन्ने चिर तक जीवन का लक्ष्य परमात्मा ना होवे, उतने तक मनुख उच्चा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। तो ये विचारधारा ते खड़े सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग, हुण इसनु वास्तविक सच्चाई दे आईने विच देखण दी कोशिश करिए। मनुख चार तरह दी अवस्थावां चो लंघदा है। प्रथम गर्भकाल दी अवस्था, दूजा हुण धरती दी गोद विच आ गया, पहले मां दी कुख दे सी, हुण धरती दी कुख दे च है, बच्चा है। तीसरी अवस्था जवान हो गया, चौथी अवस्था बुढ़ा हो गया। इन्हां चार पड़ावां तो एक मनुख नु लगना पैंदा है। गर्भकाल दी अवस्था, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। बिरध इंसान दी अपनी तर्ज जिंदगी है, जवानी दा अपना ढंग है, बच्चे दी अपनी दुनिया है, और गर्भकाल दे बच्चे दी अपनी अवस्था है। इस हिसाब दे नाल अगर युगां नू वेखी है, सतयुग गर्भकाल दी अवस्था है, त्रेता बचपना है, द्वापर जवानी है, कलयुग बुढ़ापा है, बुढ़ा युग है। अगर सच्चाई नू वेखना होवे बच्चे नालों, गर्भकाल दे बच्चे नालों, खिडौणियां नाल खेडदे होए बच्चे नालों, और जवान नालों, बुढ़ापा इस वास्ते महान है कि उसदे कोल जिंदगी दे तजर्बे आउंदे ने, उतार चढ़ाव दा सारा बोध आउंदा है। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग नूं महान आख दिता है। सतयुग त्रेता द्वापर भणीए, कलयुग उत्तम युगा माही। ए युग उत्तम युग है, क्यों? स्याणा युग है। और ए गल ते मन्नी पर मन्नी है, इस युग दे जितनी सियाणप उजागर हुई है जैसे जैसे पीछे जाओगे उतनी नहीं सी। ये जो चार युग ने गर्भकाल की अवस्था बचपना जवानी ते बुढ़ेपा इन्हों दे अपने अपने अवतार ने उसनों गुरबाणी अपने ढंग नाल बयान कर दी है और इसनों वाकई सच्चाई दे रूप विच हकीकत दे रूप विच असी देखिए ते समझण दी कोशिश करिए। चार युग मनुख दे जीवन दियां चार अवस्थावां गर्भकाल दी अवस्था बचपना जवानी और बुढ़ेपा। सतयुग गर्भकाल दी अवस्था से गर्भकाल दा बच्चा मां दे श्वासा नाल श्वास लैंदा है। मां जो खांदी है उसकी ओही खुराक है, मां जो पींदी है बस उसका ओही पान है। स्वतंत्र रूप दे उसका खान पान नहीं है। सतयुग दे मनुख पहाड़ां दियां कंदरां थले या रुखां थले रहिंदा सी, प्रकृति जो दे रही सी फल फुल ओही खा लैंदा सी। अपनी तरफों कोई भोजन बनाना और उन्हों सवारना यह अजे मनुख ने नहीं सिखिया और लोड़ भी नहीं सी। अबोध सी लेकिन एक विचारधारा भारत दे मनीष ने मनी है कि गर्भकाल दा जो बच्चा है वास्तविक उस हालत दे चाहे है जिस हालत दे एक योगी समाधि दे चाहुंदा है, एक ब्रह्म ज्ञानी समाधि दे चाहुंदा है। समाधि दे जो आनंद आउंदा है वही आनंद उस कोल है, वही रस उस कोल है, फिर जीवन भर उसे ही आनंद नूं ओ लभदा है। ये आनंद स्वभाव किस प्रकृति ने ही प्रदान किया है। निश्चिंत है, चिंता रिजक दी आती है तो मां की खुराक उसकी खुराक है, मां का पीता होया पानी वही उसकी प्यास बुझा रहे है, मां के श्वासा नाल श्वास ले रहे है। इस बच्चे से कोई समाजिक राज नहीं। निश्चिंत है, चिंता रिजक दी आती है तो मां की खुराक उसकी खुराक है, मां का पीता होया पानी वही उसकी प्यास बुझा रहे है, मां के श्वासा नाल श्वास ले रहे है। इस बच्चे से कोई समाजिक राजनैतिक आर्थिक जिम्मेवारी नहीं है। सतयुगी जीव कल्ला तनहा जीण वाला पहाड़ां दियां कंदरां विच रहन बसेरा करन वाला रुखां थले रात कटन वाला प्राकृतिक रूप विच जीण वाला। कोई रिजक दी चिंता नहीं सी, इतनी बनस्पति इतना कंद मूल इतने फल फुल स्वभाविक उपलब्ध सन। ये जी रहा सी इस तरह जैसे गर्भकाल दा बच्चा जी रहा है। निश्चिंत सी, बेफिक्र सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग दे कोई प्रबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल दे बच्चे नो आखिर समझाण वास्ते सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसी की भी लोड़ नहीं है। वो ते उस अवस्था दे जी रहे है जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दिती जाती है, उते स्वभाविक है उसके कोल, मन उसका टिका हुआ है, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक पहले पहरे रहण के वण जारिया मित्रा हुकम पया गरबास उर्द तप अंतर करे वण जारिया मित्रा खसम सेती अरदास। भावे उल्टा है गर्व देच पर अरदास देच है प्रार्थना देच है और नाम अभ्यास देच है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बन दिए प्रार्थना जो आनंद बन दा है वो उसदे कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहे है उसे ही रस दे जो है जी रहे है। इस वास्ते कहिंदे ने सतयुग विच अवतार आया पर बोना सतयुग तय माणियो छलियो बल बावन भायो बावन अवतार बोना अवतार। हां कोई दाई कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि कुछ दवाई दे सकता है लेकिन वास्तविक इस बच्चे नु कुछ भी लोड़ नहीं किसी चीज की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग नाल खुला घूम रहा सी। कोई देश नहीं सी कोई जात पात नहीं सी कोई कबीला नहीं सी कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच भी कोई देश नहीं रह जाता कोई परिवार नहीं रह जाता कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी ते उस तरह ही विशालता दे स्वतंत्र होके जो है जीवदा है यह जीवना स्वभाविक उस मनुख कोल सी जिसनु असी सतयुग कहिंदे आ ते सतयुगी जीव कहिंदे आ। जैसे बुढ़ा भी बचपन नु याद करदा है किसे हद तक गर्भकाल दी अवस्था नु याद करदा है हो बहो सतयुग मनुख नु बार बार याद आउंदा है। चाहे बाजार विच बैठा है परिवार विच बैठा है सत्संग विच बैठा है महिमा सतयुग दी क्यों सतयुग दे जो स्वभाविक अवस्था सी एक ब्रह्म ज्ञानी दी स्वभाविक प्राकृतिक रूप दे उसनु हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याग है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी संतुष्ट सी ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी अपनी मेहनत नहीं सी प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नु खुराक मिल रही है पानी मिल रहा है श्वास मिल रहे ने गर्भकाल दे बच्चे दी इस विच कोई अपनी उपलब्धि नहीं अपनी कोई मेहनत नहीं है ये तो स्वाभाविक हो रहा है ये तो प्राकृतिक हो रहा है। अगर उस वक्त दा मनुख धार्मिक सी तो प्राकृतिक सी प्रकृति ने ही उसनु जो जीवन दिता वास्तविक वो धार्मिक सी और उस विच मनुख जी रहा सी सत दे संतोख दे सतयुग रथ संतोख का धर्म बे रथवा मर्यादा दे जी रहा सी भुख लगी है ताई खांदा सी उंज नहीं प्यास लगी है ताई पींदा सी उंज नहीं नींद आई है ताई सौंदा सी उंज नहीं। बिल्कुल धार्मिक ढंग नाल जी रहा सी भुख नहीं है तो नहीं खांदा सी और जब खांदा भी सी तो घट खांदा सी। फल तोड़न वास्ते जगह जगह फल लब्बन वास्ते इनू परिश्रम भी जे थोड़ा बहुत करना पैंदा सी उहदे नाल इस दी एक तरीके दे नाल वर्जिश हो जांदी सी और इतना शरीर नू चाहिदा भी सी तो स्वस्थ सी मन करके तन करके सुखी सी। सतयुग दी बस यही रूप रेखा है पर इस अवस्था ते कोई माण नहीं कीता जा सकता। गर्भकाल दा बच्चा की माण करिए उसते उस जिंदगी ते कोई माण कीता जा सकता है। हाँ मानसिक अवस्था ते भी माण नहीं कीता जा सकता। आनंद कोल है रस कोल है पर अचेत है बिल्कुल अचेत है। आनंद दी समझ कोई नहीं उस रस दी भी समझ कोई नहीं और जिस दिन समझ आएगी बोध आएगा उस दिन आनंद नहीं होगा। आखिर ਗਰਭਕਾਲ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੇ ਰਦਵਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਜੋਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਨਾ ਝਪਟੀਆਂ ਆਮ ਸਨ, ਤੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਖੋਆ ਖਾਈ, ਤੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਦ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਪਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਤੂੰ ਇੰਜ ਬੈਠ, ਇੰਜ ਚੱਲ, ਇੰਜ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ आए श्री कृष्ण और कृष्ण जी नु कहन लीला परशोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन दे शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, होम दे उबाल बड़ा है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा ये उछले होया होम, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नु जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गले उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा जब जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापुर। ये विचारधारा देना है श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उथे उथे मर्यादा नु एक पासे कर दिता जाए, मनुख नु मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखदे हां मर्यादा दी पालना करदे आया श्री राम ने गर्भवती सीता नु अपने घरों कढ दिता। मर्यादा दी पालना करदे आया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी बहु गिणती विच, अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नू मनना ही पएगा। तो सीता नू घरों कढ़ना पया, जदके निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नू भी मर्यादा सजा दे देवे, ए श्री कृष्ण नू काबले कबूल नहीं सी। जीवन नू लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नू दबा के रख दे। तो इस तरह ये द्वापुर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसे विशेष यूनिफॉर्म दी लोड़ नहीं और वर्दी दी लोड़ नहीं, किसे खास मर्यादा दी लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है और लीला दी तरह जीवो, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नु फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था। बुढ़े तोते नु पढ़ाण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजलि दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता अगां चल के। मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप विच अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दे मंदिर विच अज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा, दिन भर मांस दा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वढ़ के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुलते हैं। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी, क्योंकि सब कुछ धर्म दे नां ते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए। सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च वी पाणी आया। देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदरां दे च सी। सब कुछ नूं छड़ के वो मंदिर ही लुटते रहे और मंदिरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप दे च हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नूं ही बन के वो अपने मुल्कां नूं गमन करते रहे और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होने लग पे और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जावरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दिती, मर्यादा नू लीला दिती। गुरुद्वारे दे च भी राग आए, संगीत आए पर मर्यादा दे। पदार्थ आए लंगर दे रूप दे पर मर्यादा दे। धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे मर्यादा दे रूप दे। पर मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे। राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताके जीवन दे च रस बनिया रवे और रस मर्यादा दे च रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है। पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई, सुख लैंदी होई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ये दो किनारियां दे बंधन दे चले और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए। संतोख ते दया, धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखया जन सोत। अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ए उपदेश ए संदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाकई ए उपलब्धि ते ओही है जो गर्भकाल दे बच्चे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दी दुनिया तो जात पात हटा दिती, मजहब हटा दिता, वर्ण बेख हटा दिते, आश्रमां दा बोझ हटा दिता, भाषा दी वितकरे भी हटा दिते, मुलुक दी तंग दिली भी हटा दिती, सरबत दे भला मनन मंगण दी जाच सिखाई और आख्या सरबत दा भला मंगो। सारा संसार थोड़ा मुलक है, थोड़ा मुलक केवल थोड़ा मुलक नहीं, सारा संसार ही थोड़ा मुलक है और थोड़े मुलक दे बंदे ही केवल थोड़े बंदे नहीं, सारा संसार साड़ा भाईचारा है। ऐसा उपदेश संदेश कल युग दे इस अवतारी पुरुष ने जगत दी झोली दे च पाया। जैसे बुढ़ा त्रिशनालु होंदा है ते सियाणा भी बड़ा होंदा है, जिंदगी दे बहुते उतार चढ़ा देखण करके उन्हों झूठ बोलना भी आ जांदा है और झूठ उसका चलदा भी है। उम्र दा तकाजा देख के बुजुर्ग है उदी हर गल नूं अगले सही मन लैंदे ने बुढ़ापे करके, जदके सही नहीं आउंदी। ए एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ ते व्यापक है, तृष्णा ते व्यापक है। एक गर्भकाल दे बच्चे च की तृष्णा होवेगी, एक खिडौणियां नाल खेड़दे बच्चे दे अंदर की तृष्णा होवेगी। हां जवान दे अंदर हो सकती है और बुढ़े दे अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। ए तृष्णालु युग ਇਹ ਝੂਠਾ ਯੁੱਗ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਗਾ ਕੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਰੱਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧੂਣੇ ਨਹੀਂ ਤਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਇਤਨੇ ਰਸ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਤਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਖੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ, ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਆਖੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੋ ਜ਼ਾਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨ ਧਰਮ ਵੇਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मैं अछूते विषय नु आज विचार दे रहा हूं, क्यों लगा हूं, वो है चार युग। वैसे से भारत की मनीषा करीबन करीबन मनुखता हर समय चार हिस्सों में वंडती रही है। उन्हें जीवन के ढंग भी चार दसे, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। ये चार वर्ण जीवन के चार ढंग, फिर चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी। हैरानगी है पुराणा मत सनातन मत सबके मूल ग्रंथ भी चार ने, जो चार वेद कहलाते हैं, श्याम वेद युग रजत अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ऋग्वेद है श्याम वेद है यजुर्वेद है अथर्वण वेद। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारों में प्रोया और चार युगों की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग इन्हों कई दृष्टिकोण के नाल नापना तोलना पेगा। प्रथम समय के चार युग, दूसरा स्थान के चार युग, तीसरा मन के मानसिक अवस्था दिया चार श्रेणिया जिन्होंने अभी चार युग कह सकते हैं। प्रथम समय के ऐसा मनिया गया है कि लख डेढ़ लख साल बाद युग बदल जाते हैं और पुराणिक ग्रंथों में युगों की बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगा बाद इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय पर खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनाया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और इस तीनों पहले मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय के चार युग इतिहास में वाचिए, आज तो 5000 साल पहले श्री राम है गए और आज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है गए। अंदाजन 525 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है गए। पर ये तिने अवतार से 5000 साल की अवधि में ही हो जाते हैं। इस युग की लखा साल की उम्र
कपोल कल्पना के बिना और कुछ नहीं। क्यों श्री राम नो त्रेते युग दा अवतार मंदे 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद हैं। श्री कृष्ण नो द्वापर युग दा अवतार मंदे ने और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग दा अवतार मने जाते ने। एक सारे दे सारे 5000 साल दे हो गए। ऐसा अंदाजा है इस युग की उम्र समय दापी है तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह आती है किवें मन लिया जाए युग बदल गया। हजारा लखा साल पहले जो सूरज थी अज भी आई है। लखा साल पहले जो चंद्रमा थी अज भी आई है। और इसे तरीके नाल धरती भी हुई है, तारे भी हुई ने, सियारे भी हुई ने, सागर भी हुई है। और किसे हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारिया नदियां भी हुई ने। पुराने तो पुराने इतिहास में गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास में जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, सागर ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इतों गल स्पष्ट हो गई युगां दी तब्दीली मनुख दी तब्दीली ते खड़ी है, ना कि सूरज दे बदलन ते, क्योंकि सूरज ते ओही है, चंद्रमा ते ओही है, सब कुछ ओही है। तो जब सब कुछ ओही है तो फिर से कोई इक्को युग होना चाहिए है। नहीं, युगां दी तब्दीली मनुख ते खड़ी है। और युगां दी तब्दीली मनुख की सोच ते खड़ी है, विचारधारा ते खड़ी है। या इंज कह लो युग एक विचार का नाम है, एक मानसिक अवस्था का नाम है। मनुख दे विचार दे बदल दें संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते हैं। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ दे तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे हैं, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे हैं, कर्मकांड बदलता रहा है। और एक सब कुछ दी तब्दीली विचार दी तब्दीली ते खड़ी है, और विचार दी तब्दीली नो ही युग दी तब्दीली मनते हैं। बहुगिणती दे जद मनुख दे विचार बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगा नो अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते हैं वो इस तरह है। आसा महला चौथा सत युग सब संतोख शरीरा, सतयुगे सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ,
शोभा गुरुमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई। हर हर लेव हर नाम सखाई, हर दरगे पवे मान जियो। सतयुग सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। धर्म तख्त ते बैठा सी, तख्त ते चार पैर होंगे, धर्म चल रहा सी चार पैरां दे आसरे। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमांदे ने, सतयुग दे धर्म दे चारे पैर मौजूद हैं। सतयुग सत संतोख शरीरा, मनुख दे शरीर दे अंदर संतोख सी, सत सी, उच्चा आचरण सी, परोपकारी बिरतियां सन और संतोख सी। मन विच तन विच प्रभु दे गीत सन, संतोखी जिंदगी कल कलेश तो बची हुई सी, लिव प्रभु नाल जुड़ी हुई सी। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज सतयुग की व्याख्या करते हैं। भौतिक उन्नति भी इतनी नहीं हुई सी, लिहाजा भौतिक रुचियां भी इतनिया उजागर नहीं हुई सी। मनुख अंतर्मुखी सन, शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो गई, इस विच संतुष्ट आनंदित सन। एक समय विच जी रहे मनुख सन और तर्ज जिंदगी से प्राकृतिक जीवन से प्रकृति के मुताबिक जी रहे सन। सहजे सहजे बदल गई जीवन शैली, जीवन शैली बदल दी है विचारां दी तब्दीली। धन गुरु रामदास जी महाराज इस तब्दीली में इंज बयान करते हैं। युगों की तब्दीली का जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है। युगों की तब्दीली नो भाई गुरदास भी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं, और युगों की तब्दीली ने जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया पहले पातशाह जी, वो विचारधारा भी आप जी के समक्ष भेंट करने हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज आसा राग दे त्रेते युग का नक्शा इस तरह खिंचते ने। त्रेता युग आया अंतर जोर वधाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते विच अहंकार उत्पन्न होया और अहंकार की पूर्ति लई हर मनुख जोरावर होने पर ही जोर लाण लग पाया। मैं जोरावर हो जावा, शक्तिशाली हो जावा, ताकतवर हो जावा। धार्मिक दुनिया जत सत ते संयम ते व्यर्थ के कर्म कांड से खड़ी हो गई। पग चौथा खिसकया प्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। प्रथा चाहिए, शक्ति चाहिए तो विघन तो है गए न, क्योंकि बहुगिनती तो जद मनुख नु शक्ति चाहिए, जोरावर होना चाहता है तो अगे वधन लई कईयां नू पछाड़ना पएगा, ते कईयां नू पछाड़ना पएगा तो कईयां नाल हिंसात्मक घटनावां भी घटणगियां, तो फिर क्रोधित होना भी उन्हां दा लाजमी है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ। ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਬਿਸਲੋਧ, ਨਿਰਪਧਾਵੇ ਲੜ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਰੋਗ ਲਗਾਨਾ, ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਾਗਰਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਬਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇਤਾ ਜੁਗ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੈਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੀਵ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਪੁਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੀਜਾ ਪੁਰ ਔਰ ਸਤਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੀਜਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ। ਕਲਯੁੱਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਯੁੱਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभे, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महाजग जोध बोकीने, महाजग जुद्ध बोकीने, विचों में पचे पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सतगुर मल लै जाए जियो। जुग द्वापुर आया भरम भरम आया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग दी रूपरेखा धनव रामदास जी महाराज बयान करदे होया कहंदे ने, जगत भरम विच पै गया, बुलेखियां विच पै गया, गोपियां कान तरह तरह दियां रास लीला दे पसारियां विच पै गया। तप तापना आरंभ होई, कर्मकांड आरंभ होए, और हंकार मनुख दा वधदा गया। समय दे गेड़ दे नाल नाल अहंकार इतना चरम सीमा ते पहुंचया, महाजग युद्ध बोकी ने बड़े युद्ध होए। वाकई द्वापुर देखते महाभारत दे युद्ध नाल सारा भारत ही तबाह हो गया। चोटी दे स्याणे मनुख, चोटी दे दार्शनिक, चोटी दे विज्ञानक, चोटी दे धार्मिक पुरुष सब नष्ट हो गए। महाभारत दे युद्ध नाल भारत दी ते रीढ़ ही टुट गई, और ऐसी रीढ़ टुटी काफी लंबे समय तक वाकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग दी व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान कर रहे हैं, बस युद्ध ही युद्ध सन, हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन, और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैरी रह गए, दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया, जग रह गया। जग ते दान इन्हां दो पैरां दे धर्म टिक गया। संतोख ते सत ये दो पैर उड गए। इस तरह धर्म दो पैरां ते टिकया। समय दे गए नाल कलयुग आया, और ये युगां दी व्याख्या समय दे मुताबिक इस वक्त कीती जा रही है। फिर अस्थान दे, फिर मानसिक अवस्था दे, जिवें जिवें गुरबाणी ने खोलिया, मैं संगत के स्रोतियां दे सामने रख रहे हैं। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कलयुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया।